0: आवत दिल ढले रस्ते में मिला एक बंगाली दर्शन का अभिलाषी वो कहने लगा
1: क्या
0: वो कहने लगा जल खोबे रसगुल्ला खोबे और कहने लगा हम

Hope you enjoyed that song from Bhavrin. And the next several selection, I think four songs, are from movie Babul. The cast of Babul were Dilip Kumar and Nargis. Nargis Dutt, born Fatima Rashid. And Munawar Sultana had a major, co-lead actress, but definitely a major supporting actress. They're supported by Jugnu, Khurshid Begum, Tuntun, Uma Devi Khatri Dalbi, Amar, Janki Das Mehra, Aisha, H. Pahari, Vinod Ismail, Nawab Premi, Chanda Bala, Raj Bala, Seema, Manhar, Meher, etc. This movie, Babul, had Naushad Ali as the composer. Lyrics were by Shakil Badawani. Naushad Ali also produced this movie. The songs are mostly about joys and pains of love, about a dozen songs in this movie. The film story is closely connected to the lyrics of the songs. Movie has, in, as I said, about a dozen songs. This is a love triangle tragedy kind of film, box office success, second highest grossing film of 1950. The four songs I want to play for you. First one is Talat Mahmood solo. The share starting the song is Khushi Ke Saath, Khushi Ke Saath Dunya Mein Hazaro Gham Bhi Hote Hain. जहाँ बस्ती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं. इन द सॉन्ग मेरा जीवन साथी बिछड़ गया लो खत्म कहानी हो गई. सेकंड वन इज अपबीट सॉन्ग बाय लता मंगेशकर. पंछी बन में पिया पिया गाने लगा सखी हाथों से दिल मेरा जाने लगा. द थर्ड वन इज शमशाद बेगम सोलो. धड़के मेरा दिल मुझको जवानी राम कसम ना बहाए बचपन याद आए. एंड लास्ट वन इज रियल ट्रू रोमांटिक सॉन्ग मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का. There are a whole bunch of other songs, but in this movie I could have played the entire soundtrack, and many of you recognize most of those songs. But one which comes to mind is starts with a sher. Hue majboor hum aur dil mohabbat karke pashtaya khushi ko loot kar meri batao tumne kya paya. Shamshad Begum Lata Mangeshkar duet, and the song is किसी के दिल में रहना था तो मेरे दिल में क्यों आए. किसी के दिल में रहना था तो मेरे दिल में क्यों आए. बसानी थी कोई महफिल तो इस महफिल में क्यों आए. अदर वन कम्स टू माई माइंड दुनिया बदल गई मेरी दुनिया बदल गई तलत महमूद शमशाद बेगम ड्यूएट. लता मंगेशकर सो लगन मोरे मन की बलम नहीं जाने. एंड सो ऑन सो फोर्थ. द फोर्थ सॉन्ग मिलते हैं आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का. ब्यूटिफुल पोएट्री. पे अटेंशन. देयर आर ओनली टू वर्सेस इन द सॉन्ग. द सेकंड वर्स इज हंसते ही ना आ जाए कहीं आंखों में आंसू. हंसते ही कहीं आ जाए ना आंखों में आंसू. भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का. अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का. आई होप यू एंजॉय ऑल द सॉन्ग्स.